मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्कसेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलावार प्रोग्राम तज्जिया और क्यों के पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल एक घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान एम एस पा शाहीन और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं ग्योखान पोलात।

तारीखी आसार की तबाही को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। इसराइल हालिया दिनों में जनूबी लुबनान के साहली शहर सोर के रिहायशियों को बार बार अल्टीमेटम जारी कर रहा और इलाके पर शदीद हमले कर रहा है। अक्वामे मुत्तहदा ने कहा है कि हमें जुमेरात के रोज़ लुबनान पर इसराइली फजाई हमलों की रिकॉर्ड तादाद पर गहरी तश्वीश है। अक्वामे मुत्तहदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा है कि तंजीम को कशीदगी में इजाफे पर शदीद तश्वीश का सामना है और हम बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों के साथ साथ जनूबी और मशरकी लुबनान में बढ़ते हुए हमलों पर भी फिक्रमंद हैं। दुजार्क ने कहा है कि हम एक बार फिर तमाम फरीकों से मुतालबा करते हैं कि वह जंगबंदी का एहतराम करें और मजीद हमलों को रोकें। हम एक दफा फिर इस बात का इरादा करते हैं कि शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे को किसी सूरत निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। हम शहरी या अमवात की भी मजम्मत करते हैं। लुबनान की सरकारी खबर एजेंसी NNA के मुताबिक जुमेरात को ईद उल अजहा की तकरीबात के दौरान इसराइली हमलों के नतीजे में बच्चों समेत कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए और मुल्क के जनूबी हिस्से में नई बेदखलियां सामने आई हैं। जिला जोहरानी में अदलून हाईवे पर एक गाड़ी पर ड्रोन हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद और जनूबी शहर सोर में एक मोटरसाइकिल पर हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूस ने कहा है कि यूक्रेन अमन में रुकावट डाल रहा है। रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन के हवाले से रूस अमरीका अमन इकदाम जमूत का शिकार हो गया है। जुमेरात को मास्को में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी फोरम ने खिताब में करते हुए शोइगु ने कहा है कि अमन इकदाम के नफाज की राह में सबसे बड़ी रुकावट कीव हुकूमत की अमन के लिए सियासी इरादे की मुकम्मल कमी और कशीदगी को बढ़ाने की मुस्तकिल ख्वाहिश है। शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन की हुकूमत समझौते से खौफजदा है क्योंकि इस तरह का समझौता मुल्क में आबादियाती बहरान समेत इसे अपनी पॉलिसियों के नतायज के लिए जवाबदेह ठहराएगा। अमरीकी ज़राए ब्लाक की खबरों के मुताबिक ब्लू ओरिजन का न्यू ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनावरेल में वाके लॉन्चिंग पैड पर फट गया है। कंपनी ने जुमेरात के रोज एक्स से जारी करदा एक मुख्तसर बयान में कहा है कि आज के फायरिंग टेस्ट के दौरान हमें एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि तमाम अमले की खैरियत मालूम कर ली गई है। वाकई के वीडियो मनाजर में रॉकेट के नीचे से धुआं उठता और बाद में रॉकेट मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आकर एक बड़े शोले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। फ्लोरिडा के रुकने कांग्रेस माइक हैरी डिप्रोस, जिनके हल्के में केप कैनावरल भी शामिल है, ने एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि हम इस धमाके के हवाले से जेरार्ड इसाक मैन के साथ रابطे में हैं। हार्डियोपोलिस ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कोई जख्मी नहीं हुआ और मैं फौरी कार्रवाई करने वाले इमदादी एहलकारों, इंजीनियरों और लॉन्चिंग टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह धमाका अरबपति जेफ बेसोस की खिलाई तहकीकती कंपनी के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है। गुज़श्ता माह न्यू ग्लेन रॉकेट एक मुवासलाती सैटेलाइट को दुरुस्त मदार में पहुंचाने के मिशन में नाकाम रहा था, जिसके बाद इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई थी। अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसनेट ने धमकी दी है कि अगर ओमान ने आप नए हुर्मुस में ट्रांजिट फीस लागू की तो इसे पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।

बिजली के शोबे में मुश्तरका मियार दुनिया 230 वोल्ट की तरफ आ रही है। दुनिया भर में बिजली के ग्रिड वोल्टेज को 230 वोल्ट पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर तुर्की के शहरी बरेआज़म अमरीका जाएं तो इन्हें 110 वोल्ट और अगर सऊदी अरब जैसे ममालिक का सफ़र करें तो मुख्तलिफ किस्म के प्लग और साकट साथ रखना पड़ता है। इस फ़र्क की बुनियाद भी दरअसल टेस्ला और एडिसन के इख्तलाफात तक जा पहुँचती है। इस मौजू पर और बेचरेकली की टीआरटी खबर के लिए मुहर्रा तहरीर पेश खिदमत है। मुख्तलिफ ममालिक में बिजली के ग्रिड वोल्टेज और प्लग की इकसाम मुख्तलिफ होने की वजह से बैरून मुल्क सफर से पहले मुतल्लिका मुल्क के वोल्टेज और प्लग सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। दुनिया में शहरी बिजली के निज़ाम के लिए मुख्तलिफ वोल्ट और हर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बिजली से मुतल्लिक कई दीगर मामलात की तरह इसकी बुनियाद भी निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान इख्तलाफ राय पर कायम है। 19वीं सदी में बर्कियात के नाबगा निकोला टेस्ला ने 3 मरहलों वाले मुतबादल बरकी रो एसी पर मबनी बिजली की पैदावार और तकसीम का मॉडल तैयार किया। अपने हिसाबात में उन्होंने मुतबादल बरकी रो के लिए 60 हर्ट्ज को मौजूद तरीन फ्रीक्वेंसी करार दिया, यानी बरकी रो के एक मुकम्मल चक्कर के लिए 60 हर्ट्ज मौजूद तरीन थे। इसी तरह उन्होंने 240 वोल्ट को भी ज्यादा मौसर करार दिया, क्योंकि इस तरह तवानाई की ज्यादा बचत होती और ज्यादा बेहतर कारकर्दगी हासिल होती थी। एडिसन ने 110 वोल्ट की हिमायत की। दूसरी जानब थॉमस एडिसन का मौकफ था कि 110 वोल्ट की मुस्तकीम रॉ डीसी ज्यादा महफूज है। जब बिजली का इस्तेमाल आम हुआ तो ये वाजे हो गया कि तवील फासले तक तवानाई की तरसील के लिए मुतबादल रॉ ज्यादा मुफीद है, लेकिन अमेरिका और इसके जेर असर इलाकों में 110 वोल्ट का इस्तेमाल जारी रहा। यूरोप में जब बिजली के निज़ाम तामीर किए जा रहे थे तो इब्तदा में 110 वोल्ट अपनाया गया, लेकिन जल्द ही ये मसला सामने आया कि एक ही ताकत से चलने वाले दो बरकी आलात में से 110 वोल्ट इस्तेमाल करने वाला आला 220 वोल्ट इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले में दुगनी बिजली खर्च करता है। इसके नतीजे में ज्यादा मोटी तारों की जरूरत पेश आई, इसीलिए यूरोप ने अपना रुख 220 वोल्ट की तरफ मोड़ लिया। ताहम 10 की अददी तरतीब से मुताबकत रखने की वजह से 50 हर्ट्ज को तरजीह दी गई। अगरचे ये निज़ाम 15% तक कम मौसर था, फिर भी 50 हर्ट्ज ही राज रहा। दूसरी आलमी जंग के बाद सफ़ें वाजे हो गईं। अगरचे बरतानिया जैसे बाज ममालिक ने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियाँ इख्तियार की, लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद पूरे यूरोप में 220 ता 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मेयार बन गया। तुर्की ने भी अपना बरकी ढांचा यूरोप के मुताबिक कायम किया, इसीलिए यहाँ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का निज़ाम नाफिज किया गया। ताहम बैनुल अक़वामी इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC ने 1983 में 220, 230 और 240 वोल्ट इस्तेमाल करने वाले ममालिक को एक ही मियार पर लाने के लिए दोबारा इकदाम किए। खसूसन इलेक्ट्रॉनिक आलात की पैदावार बरामदात और दरामदात के बायस एक मुश्तरका मियार के तौर पर 20 बरस के अंदर रिहायशी इलाकों में 230 वोल्ट और सनती मराकस में 400 वोल्ट अपनाने का फैसला किया गया। तुर्की 2003 से 230

वोल्ट इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की समेत कई ममालिक 2003 से 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के मियार पर मुंतकिल हो चुके हैं। अगरचे पुरानी आदत के तहत अब भी 220 वोल्ट कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर शहरी बिजली का निज़ाम अब 230 वोल्ट पर कायम है। अमेरिका ने भी कम वोल्टेज से होने वाले नुकसान कम करने के लिए एक दरमियाना हल इख्तियार किया और घरों में दोनों तरह के वोल्टेज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर ओवन जैसे ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले आलात के लिए 230 वोल्ट जबकि रोशनी और कम तवानाई वाले आलात के लिए 110 वोल्ट बदस्तूर इस्तेमाल हो रहे हैं। लाखों बरकी आलात को एकदम नाकारा होने से बचाने के लिए ये तब्दीली मरहलावार नाफिज की जा रही है। जापान अब भी 110 वोल्ट के मुख्तलिफ निज़ाम को इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल में तवक्को की जा रही है कि पूरी दुनिया 230 वोल्ट के मियार को अपना लेगी। ममालिक के दरमियान फ़र्क सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तक महदूद नहीं बल्कि प्लग की इकसाम भी मुख्तलिफ हैं। ए से लेकर ओ तक मुख्तलिफ अकसाम के प्लग दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। तुर्की में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लग दो पिन वाला एफ़